प्रिंसिपल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे गुण कीर्तन कर रहे थे, सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ भगवान। यू नो यू हैव भजन्स एंड यू हैव कीर्तन। टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड, ओम नमः शिवाय।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खबा खबा।

से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ। वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं।

गणपति का पूजन घर घर में होता है। उनके अद्भुत स्वरूप के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। गणपति का स्वरूप हाथी जैसा क्यों है, इसकी एक कथा यह भी है।

0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

नमः ओम शुभधाय नमः ओम शुभविघ्राय नमः ओम पंचपतकाय नाशने नमः ओम पार्वती प्रिय नंदन

ओम कुंजरासुरभंजनाय नमः, ओम वलभवा भवाय नमः, ओम वरभवा कर्माभुजंगाय नमः, ओम सिद्धकलाशाय हस्ताय नमः, ओम सुधाकराकलधराय नमः, ओम पंचहस्ताय नमः, ओम प्रज्ञेशाय नमः, ओम पुरातनाय नमः, ओम वरसिद्धि